पाणी पिता माता धरत महत दिवसरा द्वैदाई दाया खेले सगड़ जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचे धर्म हदू

0: अंत
1: सो बहर अनंत
0: कटकट
1: व्याप रहा भगवंत
0: तन
1: मह आकाश प्या
0: हर लोक पूर्ण
1: भगवान
0: बनते।

उदत जाति जिनसी रंगी उदत जी जहां उदत नेकियां उदत बदियां उदत मान अपमान उदत पौन पाई बैसंतर।

जाती संपूर्ण शाड़व वादी पंचम संवादी षड़ज अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच अब मोको भय राजा राम सहाई शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

गुरु की साथ समेत आओ। साहिब गुरु रामदास पातशाह दे उचारण कीती हुई शब्द दे रूप विच पड़ताल हर गुण गावो जगदीश राग कांदा। और शब्द धन साहिब से गुरु रामदास पातशाह

देव जी ने शब्द कीर्तन द्वारा इस जलंदे जगत नूं तारन लई गुरमत संगीत परंपरा दी दात बख्शी। रहमता परी इस परंपरा नूं समूह गुरु साहबान ने सदियां तों सिखी जीवन दे अनिखड़ अंग वजों स्थापित कीता है। दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी बाणी दे अखुट खजाने विच वख-वख रागां गायन शैलियां अते संगीत छंदां दी अदूती दात प्रदान कीती है। आप जी दी पवित्र बाणी शब्द हजारे पातशाही दसवीं हर गुरसिख हिरदे विच वसी हुई इलाही बाणी है। श्री दसम ग्रंथ साहिब विच इस बाणी नूं वख-वख रागां विच अंकित कीता गया है। गुर किरपा अते समूह संगतां दे सहयोग द्वारा संत बाबा सुच्चा सिंह जी ज्वदी टकसाल दी अगवाई विच विस्मादनाद संस्था गुरमत संगीत दे शुद्ध ते मौलिक स्वरूप नूं प्रचारन दी सेवा विच लीन है। आओ सरवण करिए राग निर्णायक कमेटी द्वारा प्रवाणित स्वरूपां अनुसार शब्द कीर्तन शब्द हजारे पातशाही दसवीं।

मैं तेरे दरदा भिखारी हां मंगता हां। आरता मैंने मंगता, जिथे आरता का अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गो मैंने पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान।

कबीर साहब सत्संग जी हो, दुनिया विच बड़े बड़े खुशी दे मौके हैं और तरह तरह नाल दुनिया अपने मन की खुशी जाहिर करती है। इस दुनिया विच जेड़े भगत लोग हैं, जेड़े रब दे बन जाते हैं, जेड़े परमात्मा दे चरण अपने मन विच वसा लैंदे हन, जिन्हां नूं अपना सच्चा पति रब लगन लग पैंदा है, एका पिर सखियां सब पिर की, खसम ते ओ आप है असी ते सब दासियां हां। कबीर साहब कह रहे हन, मैं किहो जिहा दूल्हा मैनू पाया, मैनू रब वर्गा दूल्हा मिलिया है। राम राय सो दूलो पायो अस वड भाग हमारा। बराती मेरे नाल कौन हन, मेरे पंजो तत। रब ने मेरे ते कृपा कीती है, मेरे मन रूपी सेजा ते आके चरण पाए हन, मेरे ग्रह आए राजा राम पथारा। सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट तेतीस तेती करोड़ देवता इस गल दा साक्षी है। की साक्षी है, कह कबीर मोए ब्याह चले हैं। पुरख एक भगवान, पुरख एक है, पुरख ओ वाहिगुरु आप है, असी ते सब उसदियां दासियां हां। तू ठाकरो बैरागरो मैं जे ही कण चेरी, मेरे वर्गियां लखां दासियां करोड़ां दासियां तेरे दरवाजे ते चाड़ू पईयां दिंदियां हन। मैं जे ही घन चेरी राम तू सागरो रत नागरो, हौ सार ना जाना तेरी राम, सार ना जाना तू वडदाना कर महरमत साई, कृपा कीजे सा मत दीजे आठ पहर तुद त्याई। ऐसी मेनू मत दवो, ऐसी मेरे ते कृपा करो कि मैं आप जिनू अठो पहर हर घड़ी तुहानू जपा वाहिगुरु। ते जिन्ना रे वाहिगुरु नू जपया उन्ना दी जिंदगी दा नाम ही सुख बन जांदा है, ते जेड़े रब तो बिना हन ओह दुखी हन, ते जेड़े रब वाले हन जेड़ियां खसम वालियां हन ओह सुखी हन। ते गुरु कृपा करे ए सुहाग तुहाडे जपण वालियां दा बनिया रहे। कह कबीर मोए ब्याहे चले।

सितंबर स्वामी सच में आछे साथ रहे सबको सत समावे रे कह रहे प्रभु राम नाम देवा में सुन।

लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यो मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यो करता, जी संग प्रभु अपना धरता। दीस आवत में बहुत बियाला, सगल चरण की एहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। पूरा

வேலையான குரு பிரபு. உடனே காரணம் நாம இன்னும் இருக்கு. பயன்படுத்த சுட்டியை சுத்தி பார்க்க பொருள் तो गुरु का हुक्म ही मने आए तेरी पर, क्योंकि हुक्म इस मकसद हुक्म दे विच मालिक दी बख्शिश नाल जेड़ा हुक्म देना उसकी रहमत भी ना करनी. तो हुक्म नहीं मनिया तो मैं जरूर मनन ये अपने आप रह जाएगा. पर गुरु जान के तेरी सेवा ते जे भजे नसेगा ना तो सामने कोठी विच बंद भी कर रहे हैं. मैं गुरु का हुक्म मानना भाई सिद्धा उठिया तुर लगा मैनू कौन है बंद करने वाला. बुद्धू शाह ने मुरीदा ने इशारा किया इन्होंने पकड़ के भाई सज्जे को कोठी च बंद कर. बुद्धू शाह मैनू मेरा बाल बच्चा भुख नाल मर जाए. बुद्धू शाह ने क्या नहीं जिन्हें हुक्म दिता है वो आपे रक्षा करेगा. ये तेरे मन की कमजोरी की रक्षा करेगा. बुद्धू शाह एवे तो गन्ना बुद्धू शाह दुरु गन्ना सिख धर्म जिगा बच आके मुश्किल नाल उठाया उसू और मुंह च पानी पाके कहता सतगुरे की किया मैंने उधर कैद पता है मेरा बाल बच्चा सब उनके मर्जी कौन खिलाती है. कोठी बंद एक दिन बीतिया कुछ नहीं खादा थी. दूजा दिन होया बुद्धू शाह ने किया सजे प्रसाद तक नहीं मैनू भुख नहीं. तीजा दिन होया सोचने लगा मैं बाल बच्चे तो भुख नाल मर गए होंगे तू भुखा क्यों मरना अब तो सही है भुख बड़ी राज होंगे भुख बड़ी पर्वत है. फरीद ने क्या मौतों को हुई इंसान भुख पीछे कई मेरी बड़िया बड़िया गलतियां कर मारने की लिखा है दुख विछोड़ा एक दुख भूख एक दुख सख्त वार जमदूत एक दुख रोग लगे तन खाए व्याध न होने दा दिया सात पानी सकल लग गया. नौ महीने भी समा नौ बीत जन समय का पता ही नहीं ना पलों दिया घड़िया घड़िया ने सकें चिंता दे मिनटा दे घंटे घंटिया ने पैर पैर दे दिन दिन ने हफ्ते हफ्तिया ने महीने महीनिया ने साल साल दिया सदिया सदिया के युग बीते जा रहे युग अखी घेरे माट के पल पल भी रिहाए पल पल करके ये आयु बीती. पता नहीं मन जंजाल ना छोड़ी जम दिया जब है दिन दे पैर पैर के घड़िया अगर कहना आव घटे पर बीते नौ महीने लै भाई सज्जा तेरे पौ पन मुकले हैं अज नौ महीने बीत गए हैं तू जा सकते किधर जाऊ बाल बच्चा तो भुखना मर गया हूं कोई आसरा नहीं किसे पास जाऊं. बुद्धू शाह ने कहा जी मेरे को गुरु को गुरु को बुद्धू शाह आओ तो मेरा कोई बाल बच्चा बचे नहीं तेरे कोई बच भी गया होगा तो उन्होंने भी रोक के मरांगा कि ना भुल के नहीं कहते लुकी बंदी छोड़ कहते चंगा बंदी छोड़ गुरु नौ महीने भी कह दे मैं नहीं जाना. सही गुरु शाह ने किया तो भाई सज्जा ये भी कोई राज है तू नहीं समझ मच्छी की जाने सागर के डा बैठा
ਪਾਣੀ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਪਰਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਖ। ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਬਣ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ

जिस वे दूसरा बका मारे रवादाई भगवान भी
कहने लगे भी सुनामियां दिखा रहे हैं। महाराज तो किदा पता है इतने पता तू मेरी मां बैठी है मैं कुछ देने वास्ते एवं गरीबा ना विरास ना कर भगवान जी बेजू कर कोई समय में भाव प्यारी साल संगत से सुनामे में तीजा पत्रों मारे फिर आवाज आई भगवान जी कहने लगे सुनामियां भावे मन से चाहे ना मन पर कुछ खा जरूर है महाराज तुम कि पता है भगवान जी कहने लगे सानू आवाज पी आती है दंदा की तो सुनामी ने कि महाराज तुम बड़े भोले तुम पता नहीं मेरा शरीर जरा दुबला है ते बारिश हुई है ते शरीर को ठंड लग गई है ते मेरा तो दम से दम पिया बजता है तो तुम कि कमरिया तो उस वेले भगवान पिछले बचन कर दिता जाओ दलिद्रिया दलिद्र कहते कंगले नीवी जरीर जाओ दलिद्री तो पित्र प्रोह किया है क्योंकि वन के खाना संदगी दिखा के खाना शर्मिंदगी ते खो के खाना गंदगी जो खो के मैं खाता है उसका गंदगी खाता भगवान ने वो वचन किया पूरा हो संदीपा लिखी को पढ़ के विदय भगवान कृष्ण जी तो द्वारका नगरी में मार्ग जा बने तो सुदामे ने कर सारी दुनिया का दलिद्र है करवाड़ी सुशीला निके निके बच्चे खान कुछ नहीं मिलता है फिर सुशीला ने किया सानी मैं सुनिया है कि भगवान कृष्ण थोड़े मित्र सुदामे ने किया था पागल भगवान को क्यों नहीं जाते आप भुखे पर मरते जी भगवान कृष्ण वर्गा तो मित्र है नाले वो अवतार भी है नाले राजा महाराजा भी है वो भी को क्यों नहीं जाते कुछ मिल जाएगा इस दिन चंगे मती तो जाए सुनाने लेके अपना गांव वाली जनता तेरी ठीक है पर मित्र को बदले शर्म ज्ञापी है शर्म का भी वो अवतार भी जरूर जब तो भाई साहब भाई गुरदास जी लिख रहे हैं पित्र सुदामा दाल पित्र केंद्र पंडित सुदामा ब्राह्मण दाल भी बाल सखाई मित्र सदाए लागू हुई बावड़ी करवाली सुशीला जड़ी थी उन्हें मजबूर कर स्त्री का हट भी बड़ा जबरदस्त स्त्री खेल है वो भी बड़ा पर्व लागू हुए बावड़ी मिल जगदीश दलिद्र गवाए चलता गिरदा गिटिया कीकड़ जाइए कौन पिलाए ये ठीक है बचपन कट्ठे खेलते रहे खाते पीते रहे पर वो राजा बन गया मैं तो गरीब आदमी किस तरह उन्हें को मुलाकात होगी किस तरह उन्हें को पहुंचे भाई साहब जी लिखते चलता गिरदा गिटिया कीकड़ जाइए कौन पिलाए उनका नगर द्वारका से सिख द्वार खुलता है कई दिन बाद सिंह धर्मांत भी के जिसने द्वारका पहुंचे भगवान कृष्ण के महला को अंदर जान लगा दरबार में रो क्या वे किधर जा रहे हैं जी मैं भगवान को मिल गया पीछे हट बेचारा सुना मैं डरता है पीछे हट कोई गल नहीं मैं अगे ही पता थी गरीबा को होना होंगे एवं घरवाली ने जिद की थी आना ही नहीं पर सुदामा रो मना इतनी दूरों आए निराश ही चले जाएंगे भगवान ने तकिया रोंदा क्यों है सुदामे ने किया बड़ी दूरों आया आस तार के मित्र को मिलवा केड़ा मित्र भगवान कृष्ण मेरा मित्र राहो भगवान कृष्ण के मित्र अपनी शक्रवत्ता धर्मे इतने राजे महाराजे आके खड़ोते कोई पूछता नहीं तू किधरों का मित्र रोह के कह लगा है दरबार मैं सच की दरबार के बीच लागे थके मत्थे से तिलक लगा होया ब्रह्म जा इसी खैर पहला मैं जाके बेनती कर रहा सुदामा बारिश हो गए
ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਰੁਕਮਣੀ ਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਜੀ ਚਰਨ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ? ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖੜੋਤੇ ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਵੇਖੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹੀ ਉਜਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ

भगवान ने अपने तखत में चाल मारी तो इच्छा आ गए तो कहने लगे हो करमा मेरा मित्र छुपा मेरा प्यारा सुदामा भगवान कृष्ण जी भजे पहुंचे जिथे सुदामा खड़ोता है जाके कीता दूरों देख अयोध्या जी ने दूरों देख दंडौत कर रणौता कर रणौत जान दे एक तो होते ना तो मत्था टेक ले एक है दंडौत दंडौत होते सारा श्री लम्मा पर परोस कर दिए दंडौत बंधन अनुभव आपने कितने कितने मुझे प्रेम यानी खास सिंह जोगू हो गया थे दंडौत कर सारा शरीर पूजा करके दो मिनट जोड़ के एक गुरु के नमस्कार भगवान कृष्ण जी सुदामे दे के जाके पहला दंडौत की दोनों देख दंडौत करें

0: पहला गेट पर रखा, चार परिक्रमा करके सुनामे उसे छाती कर सारा गेम मिस्टर साहब अजकल मिस्टर स्वार्थ पूरा है तो मित्र हम तेरी स्वार्थ पूरा नहीं तो वो मित्र मुखात्मक भी कर लेंगे निंदा भी कर लेंगे जित दिन स्वाओ ना उपजे तित दिन बोलन गम सुदाम ने जी प्रकरण करके छाती ना लह के आए ते जिस आसन से आप बैठे सब सुदामे ने बिठा सुखनी से राज मेरा मित्र आया है जल लिया सुदामे ने चल को रुकमनी से राज का पानी कहते हुए भगवान कृष्ण सुदामे नाम मिठे मिठे बदल कर सुदामे कितना चिर पिछे नहीं कुमार कर जितने तेरी हालत की होगी है तेरी दिशा भी बन गई है ऐसे बिहार बिहार ऋषियों एक कंटित जाल पड़े पद को तेरे पैर झंडे चुके जितनी कोई भी थी सुदामा जी को
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

किन्हीं निवल भुयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे। तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वेसा, किन्हीं ग्रह तजवन खंड पाया, किन्हीं मोन अवधूत सदाया। कोई कह तो अनन भगवती, मोहे दीन हर हर ओट लीती।

पंडित सासत सिमृत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भजमन मेरे तरभव जल तू तारी सन्यासी विभूत लाए दे सवारी परत्रय त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूरख हर आस तुम्हारी खत्री कर्म करे सूरत तन पावे सूद वैस पर कृत कमावे मैं मूरख हर नाम छड़ावे सब तेरी सृष्ट तू आप रया समाई

औद कटा दिना सरणारे मन गुरु मिल काज सवारे रहाओ एव संसार विकार संसे महतरे ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे एहो रस कथ कथा।